0: ओ भाई बीटी मत दे, लाइन दे।
1: अंडा नॉनवेज नहीं होता और बियर दारू नहीं होती।
2: Your home for community. CJMR 1320.

0: Your home for community. CJMR 1320.
1: दूध उबालोगे? दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

जब तू साथ नहीं होती तड़पता मेरा दिल है, मेरी रग रग में लहू के साथ साथ तू भी शामिल है।

तेरे जैसा किसी ने कहीं आज तक कोई देखा नहीं, तुझको पा लेने की अब किसी हाथ में कोई रेखा नहीं। तेरी आंखों का साहिल ही तो मेरी मंजिल है, तू मिल न मिल। तेरे होठों का तिल मुस्तकिल दिल का कातिल है, तू मिल न मिल। सारी दुनिया इसी सोच में ही मगन है कि तू कौन है, शाहजादियों को भी तुझसे जलन है कि तू कौन है।

0: मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम। कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

तेरा चले पिले ले पूरा दिन हो तैयार तू घंटे न गिन मैं हूँ यही एट योर सर्विस टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट हाथ मेरा थाम लेट मी मेक यू स्माइल आई लाइक योर स्वैग यू लाइक माय स्टाइल देती मुझे विंडो सीट खुद लेती आ जब भी होती लो तू मेरा नंबर कर डाल मैं हूँ तेरे साथ तू है मेरे संग साथ तेरे साथ टाइम की खबर न लगे किसी भी चीज में कसर न लगे मांगू दुआ यही नजर न लगे बेबी ऐसे है मत कर हमें क्या मत तुम मुझको मिली है ये है मेरी किस्मत।

नियाज हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम। कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।

0: चलो यार जानी मुझे मामा
1: कोई सूर मानी आया तेरा साडा ना रोक सके
2: सदा राठा दे करे ही राठ जम दे काम सुन के यारा दा वैरी कंब दे हत्तीवी बाज नीवी पागे लंघ दे हत्तीवी बाज नीवी पागे लंघ दे रखी दी नी पल पले आम शूक दी मैनू जम दे नू जम दे।

0: थोड़े चा ते बहुते दर्द जो दिल दे विच लको गया है। लै मां तेरा सियाने वर्गा पुत परदेसी हो गया है, परदेसी हो गया है।
1: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.

0: कुछ तस्वीरें ही आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज दोपहर तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे। गाड़ी के शीशे चारों तरफ से काले थे।
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.
2: Hey, Sink, are you there?

तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

0: CJMR 1320, the voice of the city.
1: हर वेले हुंदा नी इंसान यारों माड़ा का।